हम हो बे कचे ना ते याद है क्या मैं नव जंग क्या चे मैं ने ने सलाह हम तो जे पे हम हो बे कचे ना ते याद है क्या मैं नव जंग क्या चे मैं ने ओ